0: थाह संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाह संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति द न्यूज प्लस।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानद्वारा विभूषित ख्याति प्राप्त ज्योतिष आचार्य पण्डित प्रेम प्रसाद सुवेदीको साथमा कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु नेपालभर एकैसाथ हरेक दिन बिहान 7 बजे

श्री गणेशाय नमः अस्मद् गुरुभ्यो नमः अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ विघ्नेश्वराय परधाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे स्थिपुरन्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु।

हजुर नमस्कार नमस्कार नमस्कार, अनि हार्दिक स्वागत एवं न्यानो रात्रिकालीन अभिवादन छ तपाईँ सम्पूर्णलाई यति बेला कार्यक्रम गुड नाइटमा। श्रोता एवं मित्र, तपाईँ यति बेला

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।